0: क्या बात करूं?
1: कुछ भी।
0: रवि, मुझे बहुत डर लगता है, जाने हमारा क्या होगा।
1: मीना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे। बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो।